सपापे सचियार तापिया न जाहे कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तन पाया मान नानक कवि गुण नतान. We stick together. I can't even remember where the hell I am. Payaman, oh yeah. Nanak Gavye Guni Natan, right, okay. Gavye Sarni Manarakiya Pao Tukaparaha Sukkale Jai Gurumukha Natan Gurumukha Vedan Gurumukha Rahi Samai Guru Isara Guru Gorak Barma Guru Parpati Mai Jeha Jarna Hakanahi Kahan.

एकंकार सतगुरु प्रसाद देहरास हर जुग जुग भगत पाय फेज रखदाय राम राजे हर नाकश तुष्ट हर मारिय प्रात राय अहंकार्य निंदक प्रत्ये नाम ज्यो मुकलाय चल नानक असहार सेव्या अंत ले छड़ श्लोक में लपेला दुख दारू सुख रोग भया जस सुख तम न होय तुम खाट खन में नाही जाहु करि न होय पलहारी खुरित वास्या थिरा एकंका सतगुरु प्रसाद देहरास हर जुग जुग भगत पाय फेज रखदाय राम राजे हर नाकश तुष्ट हर मारिय प्रात राय अहंकार्य निंदक प्रत्ये नाम ज्यो मुकलाय चल नानक असहार सेव्या अंत ले छड़ श्लोक में लपेला दुख दारू सुख रोग भया जस सुख तम न होय तुम खाट खन में नाही जाहु करि न होय